कहा बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी।

नरक स्वर्ग अवतार। सब पंचम पातशाह जी महाराज वचन करते ने नारायण ये परमात्मा का एक नाम है। परमेश्वर के सैकड़े नामों के विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के विच वरत्या हुआ एक अहम नाम है, क्योंकि उहदे नाम अनेक ने। किरतम नाम कथे तेरे जेहबा, और वो सारे नाम ही प्रवान ने। महाराज इत्थे कह रहे हैं जिन्होंने नारायण नू नहीं सिमरिया, परमात्मा नू नहीं सिमरिया, परमेश्वर नू नहीं सिमरिया, सगों स्वादां विच पै गए, विकारां दे विच खचत हो गए, तरह तरह के स्वाद माणे, चस्के बन गए, ओह विकार भोगे, पर उस परमात्मा नू नहीं सिमरिया। देखो महाराज ने यह नहीं आख्या भी तुसी स्वाद ना माणो। महाराज तो कहिंदे भाई जिह प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे, वह सारे इशारे आउंदे ने। महाराज ने किते मना नहीं किया, पर नाल दी नाल उस परमात्मा नू याद रखना, उस परमात्मा का शुकराना करना, उस परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी का धनवाद करना लिखिया। पर इत्थे जिन्हां ने नारायण नू नहीं सिमरिया, दुनिया का वड्डा हिस्सा स्वादां च फसिया है, विकारां च फसिया है, टेस्टां च फसिया, दे विच कोई दोरावा नहीं, पर नारायण नू सिमरन वाले किन्ने ने। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज तां इह कहिंदे ने, कहिंदे कोटन मैं नानक को नारायण जिहे चीत। सतगुरु तो कहिंदे आ करोड़ां लोग ने इस धरती दे उपर, करोड़ां दे विचों अरबां दे विचों कोई एक अद्धा मसा है जिहड़ा नारायण नू सिमरदा है, परमात्मा नू सिमरदा है, उस वाहिगुरु का धन्यवाद करता है। नहीं तो दुनिया रसा कसा च स्वादा च फसी है। जदों के महाराज ने तो बाणी च इतों तक भी आख्या, कहिंदे जो ना भजंते नारायण तिनका मैं ना करों दर्शन। कैसे कमाल दे बच्चे ने, पर धन पर दारा पर हरि ताकै निकट वसै नर हरि। जो ना भजंते नारायण, जो परमात्मा नू नहीं सिमरदे, नारायण नू नहीं भजदे, उहनू नहीं ध्यांदे, उहदे शुक्रगुजार नहीं हुंदे, उहदा धन्नवाद नहीं करदे, उहनां दा मैं दर्शन भी ना करां, मतलब मैं उहनां दे मत्थे भी ना लगा, ना उहनां नू मत्थे लावां। आपां कहिंदे मैं तो उहदा मूंह भी नहीं देखना चाहुंदा, दर्शन तो भावे है। आपां खीदा कहिंदे आ भी मैं मूंह नहीं देखना चाहुंदा, जिहड़ा बहुत माड़ा बंदा होवे, बुरा बंदा होवे, भैड़ा बंदा होवे। नहीं तो मनुख कहिंदे जिन्ने चिर दुनिया च चलो किसी नू देखना पैणा है, इह तां सारा कुछ चलदा, पर किनू नहीं देखना जिहदे नाल नफरत पैदा हो जाए। महाराज ने बाणी दे विच आख्या, कहिंदे जिहड़ा नारायण नू नहीं सिमरदा, नहीं भजदा, उदों मैं देखना भी नहीं चाहुंदा, उहदे मैं दर्शन भी नहीं करने चाहुंदा। कारण उहदे अंदर शुकराना है ही।

सब पूजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो जिस दियां ए वड्डे आईया कह नानक सुन हो संतो हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर

सतनाम श्री वाहिगुरु जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे सो कोहटल गुर सेवीऐ एनस सहज सुबाय दर्शन प्रसिया गुरु कै जन्म वरण दुख जाए दर्शन प्रसिया गुरु कै जन्म मरण

देख तेग देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहें लागते दीवान रहें।

रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वे जोग दोयकार चलाव है लिखे आव है भाग आदेश तिसाय आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान जेव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै पुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विदान आदेश तिसाय आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसाय आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जीबा लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मान सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खोह कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेस केते बरमे काड़त कड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरते सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै काड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबाल सूर तिन मह राम रहया भार पूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मर है ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै है के लो कर है आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार भाओ खला अगन तप ताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन काउ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात द्वय दाई दाया खेलै सगल

ਕਰੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ
नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी
चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तता हे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब विसव रच्यो सोयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नित भाखत नित कोट सिमरित पुराण शास्त्र ना आव ही बहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अन भव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु एकै सदाहु आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भार नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वरते चत्तर चक्कर परती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमं ना पितरै ना कर्मं ना काय अजन्मं अजाय ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृसै
भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के बिभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आ सूक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बेहीनै के एकै अधीनै के चित्रं बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्याय के सर्वत्र दान्याय के सर्वत्र गौनाय के सर्वत्र पौनाय के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र भेसाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनाय के सर्वत्र लीनाय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र भेसाय के सर्वत्र कालाय के सर्वत्र पालाय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सोखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र तराणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र देसाय के सर्वत्र भेसाय के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भान्नाय के सर्वत्र मान्नाय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलिमै के परमं फहीमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजूह है तमामुल रुजू है हमेसुल सलामै सली खतमुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं बिभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं बिभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी शांद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंद हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छांद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोत्रय ना पुत्रय ना सत्रय ना मित्रय ना ताताय ना माताय ना जाताय ना पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहेस्तुल निवास है के सरबुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बार नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बेस्वंग पर है करुणालय है निरप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंग कृत है सर्वा कृत है कर्ता कार है हरता हार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पूजंग पर्यात छंद
नमो सूरज सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह करता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख, नाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते, सदा सचदानंद सतरंग परनासी, क्री मुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब विभूते गजायब गनीमे, हरियं करियं क्री मुल रहीमे, चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते, स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेपूते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वय प्रसाद सुवैये, सरावग सुध समूह सिधान के देख प्रयो कर, जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह, अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते, एक रति बिन एक रत्ती के, मातिम तंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग, सवारे कोट तुरंग कुरंग, से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत, शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहा भय भूपत, अंत कौ नांगे ही पाए पधारे, जीत फिराए सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के, सुंदर हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गणे नहीं जात बिचारे, श्री पत श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संजम नेम अनेक बिसेखा, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेखा, पौन आहार जति जत तार, सबै सो विचार हजार क देखा, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेखा, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सनाह दुर जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन मैं कर, पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीन मरूर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अभिचार है सार की धार, पछैया तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गुड़ान के तोड़न हार, सो बातन ही चकचार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया, दानव देव फनिंद निसाचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह परसन फिरै जग,
सत्तर सभ्य अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है पात साहिब दसवीं कबेओ बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मूर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संघरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुरदास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ
ता का मूढ़ उचारत भेदा, जा को भेव न पावत बेदा। ता कौ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपारंक, भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठाउर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छै करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै ब्यापत कोई अडिल। सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो या की एक बार, चाओ पई को कह चाओ पई। संबत सतरह सहस पनिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरित शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया। शब्दोता गाव हो हरि के रामन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया
तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया। कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो साची लिवै बिन देह निमानी। देह निमानी लिवै बज हो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह तुटा तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै। पावै ता सो जन देहे जिसनो होर क्या करहे बेचारिया। एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै। कहे नानक जिस देहे प्यारे सोई जन पावै। आवहो संत प्यारिहो अकथ की करहै कहानी। करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ। तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्यै पाईऐ। हुकम मन्यहु गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी। कहै नानक सुनहो संत हो कथिहो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया। चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कहै नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले। एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणै। आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया।
कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सोर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा। बहुत नाही बोलना,

हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलया करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कह, क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचया, सो हार मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर सिव चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। एस रमन हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी सच अलख विडानी, ताकी गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवहो, साचै सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन, नौ दुवारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरद्वारे लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नाव निद तिस दा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचै घर गावहो, गावहो ता सोहिला घर साचै, जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है, जा तुद भाव है गुरमुख जिन्ना बुझाव हे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पाव हे। कह नानक सच सोहिला सचै घर गाव हे, अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तूठ करो।

दास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं होई सहाए अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया।

अम्य दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नाव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी

त्रिगत होके सत्संग जी नाम नूं सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकदे हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है उत्थे सुन सकदे हो कंठ चक्कर जिथे गले चों आवाज आउंदी है उत्थे सुन सकदे हो अंतरगत होके किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जीओ जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे है उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ ये शब्द जो परमात्मा दी मुख दी आवाज है जिन्हां गुरमुखां नूं सुनदे है उन्हां ने इस विच ध्यान रखना जीओ जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा सास ग्रास सिमरन अंतरगत होके करदे रहना जीओ स्वास अंदर नूं आउंदा वाहे फील करना स्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना इस तरह आपां कम कार करदे उठदे बहिंदे अंतरगत होके सास ग्रास सिमरन करना हुंदा जीओ जिन्ना भी लाहा लिया जावे लेना जीओ कृपा करनी नेत्र बंद रखने आ दो मिनट मगरों आपां फिर रसना नाल जपांगे जीओ।

गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्वास न परया रे बलिहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए

परस दर्श कत सजनी कत बैन बैन मन मोहन। भाई साहब कहते हे गुरमुख सखी पारस नू परसन वांग सतगुरां दे ओ दर्शन ने जिन्हां ने गुरु दे दर्शन नू परसिया और वह सोने वर्गे उज्जल ते उत्तम हो गए। पारस की है जिहदा जिक्र बाणी च बहुत बार आया पारस का। गुरु साहब ने बाणी दे विच गुरु नू भी पारस आख्या। पारस दे नाल किसे भी धात नू ला दो, वैसे अठ धातां की गिनती विद्वाना ने लिखी है, कोई धात ला दो पारस दे नाल पारस नू जदों टच करती है तो वह सोने विच बदल जाती है, पित्तल है सिल्वर है इत्यादिक वह सोना बन जाती है। गुरु नू पारस तां किया भी जेड़ा भी लोहे वर्गा गलिया सड़िया मनुख भी कठोर हिरदे का मालिक भी जदों गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ता है, गुरु पारस दे नाल छूंदा है ते ऐसी छोह मिलन दे नाल ओ भी ऐन सोने वर्गा उज्जल हो जाता है। गुरु अमरदास साहब महाराज का जो जीवन पढ़ते हैं, उन्होंने बीबी बीरो जी दे कोलों माफ करना बीबी भानी जी दे कोलों उन्हों का रिश्ता बनता है, अगर उन्होंने पुत्री है, उन्होंने बड़ी सेवा की। पर गुरु अमरदास साहब महाराज के जो जीवन के बहुत बड़ा मोड़ आता है, उन्होंने अपनी भतीज नूह उन्होंने कोलों की सुनिया सी, भाया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तनेहा। जे गुरु ऐसा मिल जाए मनूर लोहा गलिया सड़िया बेकार का कठोर लोहा भी कंचन दे विच बदल जाता। बस उदू बाद उन्हां दे जीवन दे विच चाओ पैदा हो गया, गुरु साहब दे संपर्क विच आए ते सचमुच खेड ऐसी वापर गई। इस करके भाई गुरदास कहंदे ने कहंदे हे गुरमुख प्यारिओ पारस नू टच करन दे नाल शुह जाण दे नाल परसन दे नाल ते जिवें धात सोने विच बदल जांदी है इसे तरह समर्थ सतगुरु दे दर्शन कीते आ, समर्थ सतगुरु दे संपर्क विच आया, समर्थ सतगुरु दी शोह प्राप्त होने दे नाल मनुख उज्जल ते उत्तम हो जांदे ने, सोने वर्गे कीमती हो जांदे ने। ते फिर की लिखदे ने अते किथे हन ओ सतगुरु जी दे दर्शन परसन दे नाल जीवन सोने वर्गा उत्तम ते उज्जल हो जांदा है। किथे ने ओ मन नू मोह लैण वाले सुंदर नेत्र, किथे ने ओ मिठे ते अमोलक बचन करन वाले सतगुरु। कहंदे कत वै किथे ने नैन बैन मन मोहन, इहदा मतलब जे किथे ने कह रहे ने भाई गुरदास किते दूर बैठे ने, सीधी गल क्लीयर हो गई भाई भाई गुरदास गुरु साहब दे नेड़े नहीं हैगे। जे नेड़े होण फिर तां कहण दी लोड़ ही नहीं वी किथे ने उह। जदों भाई साहब कांशी गए ने आगरे गए ने उस वेले उन्होंने गुरु साहब नूं मिस भी कीता है, गुरु साहब जी की घाट नूं महसूस कीता है, और जिहड़े गुरु साहब अपार कृपा करन वाले सन ते उन्होंने फिर उस प्रेम दे विच आके बैराग दे विच आके बैरागमई अवस्था दे विच आके फिर उन्होंने ये सवैया लिखिया जिहड़ा अज वाचिया। कल तक आप कवित वाचे सी, दो सवैये ने उस तो बाद फिर कवित शुरू होणगे। देख लो भी किड्डा प्रेम है, याद किवें कर रहे ने गुरु साहब जी नूं, किवें चेते कर रहे ने, किथे ने वह सतगुरु जिन्हां दे दर्शन कीते ही मन आनंदित हो जांदा। जिवें आपां पढ़दे हां दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए, उन्हां दा मन लोचदा दर्शनां नूं, उन्हां दे मन च गुरु साहब दे दीदार दी चाह है। फिर कहण लगे

उदर नानक प्रभ अंतर जामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां अंदर आनंद कारज की आरंभता की अरदास होई है। गुरु साहिब ने हुक्मनामा बख्शिया है, हुण रागी सिंह पल्ले का शब्द पढ़नगे। बेनती है बेटी दे परिवार नूं, ओ बेटी नूं बेटे का पल्ला फड़ाउण, उस तों बाद फिर लावां दा पाठ शुरू होवेगा।

पर विरति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी।

तेरी तुम मात पिता हम तुमरी कृपा मैं कोई ना जानी तुमरा ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते होए सो तुमरी गात मेत नानक दास सदा कुरबानी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आए श्री हर किशन ते आइया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दे आवै ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता

करही सोह मरी रचिया करही बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

या अहनिस सहज सुबा दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जा हुआ सिपत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठा सचे पादशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सचा पादशाहू सिरशां दा जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवां आगै सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रब कीता आगै सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहूं नाही

हर जन केवड़ भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भाग हीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तेन तोर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सत

हर हाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोए ना किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भौ करिया ऊडे ऊड आवै सह कोसा

सिमरन करिया सब निदान दास अष्ट सिदान ठाकुर कार तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जी आका दा तारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडान तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग में सुख वासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता।

सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खाट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भाव है सोई वरत है जी तू आपे कर है सो होई। तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावे सोई थीसी। जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जीव जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा।

यहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संत

नह पैव। आप आपनी बुध है जेती, बरनत पेन पेन तुहे तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, अरंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बौहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर एकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्या उबार असिख्या संगरो, दुष्ट जिते उठवा तोत पाता, सकल मलेश करोरण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यय है, ताके काल निकट नह है।

हो, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी।